0: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
1: टाइम चेक।
2: यति बेला बिहानको 7 बजेको छ।
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाको ज्योति सुन चाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
4: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।
5: 93.4 रंग बहार रंग बहार
6: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
5: बर्जर पेंट से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
6: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि।
5: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ। बर्जर पेंट।

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेंट से घर रंगाउनु होस् लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि
0: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ बर्जर पेंट्स।

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्ज संग गई उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्ज पेंस के घर रंगा उन होस्ट्रा लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जीतने मौका पाउन होस
1: साथ ही 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जीतने अवसर पाओ
0: वर्ज पेंस

स्वाद जसले सम्बन्ध गाँस ज्ञान मसला गोयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप नेपाल्स नंबर वन ब्रांड नक्कली देखि सावधान जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

0: 20% சம கேஷ் அபிர்தா.
1: சைலே பண்ணி சாஹ பண்ணி.
2: கேஷ் அபிர்தா லினுபாயதா.
3: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्. एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्. एनसेल नेपालकै लागि.

0: 完了。Camera rolling.
1: Ya, bata baski jungle fast. No matlab. No matlab.
0: Fix ala. आउनु भएन नि त ढिलो ढिलो
2: है
0: ल क्यामेरा रोलिङ
1: एक्सन
0: जङ अगाडि जाउँ अलिकति चुम्मा चाडो

बात जससे संबंध गास्त ज्ञान मसाला गोयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप नेपाल नंबर वन ब्रांड नक्कली देखि सावधान जिंदल को लोकप्रियता ने गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

0: বাটফালিয়া পোখরা ক্লিনিক, নিউ রোড পোখরা, ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-0611।
1: হ্যালো, কি ছ তেরো খবর?
2: ঠিক ছু ইয়ার, সঞ্জয় ছস?
1: ও সঞ্জয় ছু, অব ভিসা লাগে পছি তো পার্টি দিনে হলা নি?
2: পার্টি তো দিনে উঠিও, কিনমিল করা বাকি নেই ছ ইয়ার।
1: মলি তো সবই কিনমিল করি সকে, অব বেডশিট, সিরক র দুই চার থান টপস কুর্তি কিননু ছ।
2: মলি বনি কিননু সকে, সঙ্গে কিনম ল।
1: তুমি জানি অস্ট্রেলিয়া, ম ক্যানাডা ইয়ার।
2: সবই ঠাকুর বেসাইদ অনুসার কো বেশি পাউনি ঠাউ সকে, কিননু সংসার। হতেই জান না।
1: ए औ औ मैले पनि खूब सुनेको छु किनमेल संसारको बारे। ब्रान्डेड ब्रान्डेड तन्न पाइन्छ त्यहाँ।
3: विदेश लैजान तथा पठाउनका लागि भ्याकुम प्याक गरिन्छ, साथै भ्याकुम ब्याग पनि उपलब्ध छ।
4: जुनसुकै ब्रान्डका आकर्षक तन्ना सेट, सिरानी, कुशन, सिरक, ब्ल्याङ्केट, ब्ल्याङ्केट कभर, बेड कभर, दिवान सेट, डोर सेट, समर ब्ल्याङ्केट, कुशन कभर, टावल, कुर्ता, टप्स पाइने एकमात्र ठाउँ किनमेल संसार, गैरापाटन पोखरा, प्राइम सहकारीको भवन, कुमुदिनी होम्स स्कुलदेखि 50 मिटर पश्चिम। मोबाइल 9856031412, 9864667887।
5: तन्ना आज फेरि आउनुस्।
6: मुटु सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सूचना।
7: तपाईँको सुन्दर नगरी पोखरामा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र काठमाडौँमा कार्यरत डीएम प्राप्त डाक्टर विराट कृष्ण तिमिल सिन्हाद्वारा हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार सुन्दर पोखरा फार्मेसी महेन्द्रपुल पोखरामा मुटु रोग सम्बन्धी उपचार सेवा दिइरहनु भएकोले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला।
6: उपचार हुने समस्याहरू:
7: हृदयघात,
6: हाई ब्लड प्रेसर,
7: हार्ट फेल,
6: छातीको दुखाई तथा थकान,
7: मुटुको भल्भमा समस्या,
6: मुटुको बाथ रोग,
7: हाई ट्राइग्लिसेराइडिटिजी,
6: मुटुको धड्कनमा अनियमितता,
7: हाई कोलेस्ट्रोल,
6: पेसमेकर राखेको वा राख्नु पर्ने,
7: एन्जियोग्राफी, एन्जियोप्लास्टिक गरेको वा गर्नु पर्ने,
6: मुटु रोग सम्बन्धी उपचार तथा परामर्श,
8: बिरामी जाँच यही भदौ 27 गते शनिबार बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म।
6: पुनश्च फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिन्छ।
7: थप जानकारीको लागि सुन्दर पोखरा फार्मेसी महेन्द्रपुल पोखरा, फोन 061-587-266-553-834

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।